चंदन दास की आवाज थी, निदा फाजली के बोल थे। रंग तरंग कार्यक्रम की ये थी पहली पेशकश। जगजीत कौर की आवाज। बोल मिर्जा शौक के। मौसिकार खयाम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग। कलाम निदा फाजली का, आवाज कब्बन मिर्जा की, मौसिकार खयाम।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे।

निशान फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। सही लुधियानवी की बोल आर डी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम जोशीला।

आप सुन रहे हैं एतबार फिल्म का गाना, अशोक भोसले और भूपिंदर की आवाजी, हसन कमाल की बोल बप्पी लहरी की तर्ज है।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुनिए सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत हमने विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और इस इबारत के जरिए आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आज किस तरह के या कौन कौन से गाने पोस्ट होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। ये इबारत उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने विविध भारती का फेसबुक पेज नहीं देखा है। दो लोगों की बातचीत है इस इबारत में। देखो ना, अक्टूबर आ गया, पल पल कैसे बीता जा रहा है ये साल। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। पता भी नहीं चलेगा साल बीत जाएगा। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है। तुम तो शायर बन गई। मैं शायर तो नहीं, शायर नहीं या तुम शायर बदनाम। अच्छा बताओ, क्या ख्वाब देख रखा है तुमने अपने लिए? मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने। अच्छा तो क्या आज भी गानों में बातें करनी है? धूप लगे तुझको तो छाया बनूं। किताबों में लिखे हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? जाओ, नहीं करनी बात, बात बात में रूठो ना। तो भाई, ये आज की इबारत और इस इबारत के जरिए आज के गानों का इशारा तो हो गया। बहुत सारे श्रोताओं के मैसेजेस हमें मिले हैं और इतने सारे कि इन सबको पढ़ना लगभग मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अक्टूबर की दस्तक के साथ साल बीतने के एहसास ने दो दोस्तों की बातचीत को बहुत रोमांटिक और संगीतमय बना दिया है, यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं आपसे रूठा हुआ हूं क्योंकि आप जल्दी जल्दी कार्यक्रम देने के लिए नहीं आते हैं, बहुत इंतजार करवाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अक्टूबर का यह खूबसूरत महीना साल के सबसे प्यारे सुहाने मौसम की शुरुआत लेकर आता है। इस महीने गर्मी कम होती है, हल्की ठंडी हवाएं चलती हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सच में कितनी खामोशी से पल गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता कब महीना साल बन गया। इसलिए जो पल आज हमारे पास हैं उसे शिकायतों से नहीं, मुस्कुराहटों और अपनों के साथ जी लेना चाहिए। बीता हुआ पल लौटकर वापस नहीं आता। एक और श्रोता का कमेंट है, जनवरी से शुरू किया आ गया अक्टूबर, लाख कोशिश की मगर मिला न कोई दिलबर, मिला न कोई दिलबर तो अकेला रह गया, दुनिया भर के रंजो गम सह गया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा एक श्रोता और हैं जिनका कमेंट शामिल करते हैं और फिर आज के पहले गाने की तरफ बढ़ेंगे। ये लिखते हैं कि विविध भारती के 70वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक और सुरीले प्रसारण में यूनुस खान, ममता सिंह और मंदाकिनी जोशी शामिल हुए, इन्हें समर्पित एक कविता, विविध भारती के 70 साल सुरों का कारवां। 70 बरस से जो गूंज रही है वो देश की प्यारी वाणी है, हर दिल को जो सहलाती है वो सुरीली कहानी है। सतरंगी सुरों की महफिल में कुछ नाम सदा ही छाए हैं, अपनी आवाज के जादू से जो दिलों में बसने आए हैं। यूनुस खान साहब की वो गंभीर नशीली तान सुनो, अल्फाज तराशे लगते हैं जब गूंजे उनके गान सुनो। फिर आती है ममता जी जो सबकी रेडियो सखी बनी, सुख दुख की बातें करने वाली वो एक पावन नदी बनी, सखी सहेली के आंगन में वो बहनों की हिम्मत जगाती हैं, ममता मायूस आवाज से वो हर घर को महकाती हैं। और मंदाकिनी जोशी का अंदाज बड़ा ही पावन है, हेलो सहेली और सदाबहार नगमे जैसे महकता सावन है, सहज सरल सौम्य रूप बातों में मिश्री घुलती है जब वो माइक पर आती है, यादों की खिड़की खुलती है। सुंदर बातें आपने लिखी है। चलिए आज के पहले गाने की तरफ बढ़ते हैं और वो गाना है ये, गुलमाल फिल्म का गाना, गुलजार साहब के बोल। जब ये गाना बजता है तो जैसे गाने अतीत की तरफ हमें ले जाते हैं, ये गाना अतीत के किस बरस की तरफ, किन यादों की तरफ आपको ले जाता है। इसके अलावा एक और बात, 9 महीने तकरीबन बीत गए इस साल के, इन 9 महीनों में आपने क्या खोया?

आने वाला पल जाने वाला है। हमारे कई श्रोताओं को इस गाने के जरिए मजा आ गया। एक श्रोता ये कहते हैं कि फिल्म गोलमाल का गीत सुनकर उत्पल दत्त याद आ जाते हैं, और याद आता है आलू का पराठा क्यों बेटा, मैं तुम्हें आगरा का पीठा खिलाऊंगा। उत्पल दत्त का रोल शानदार है। और कुछ श्रोताओं के लिए एक क्विज, एक सवाल, गोलमाल फिल्म के संवाद किस लेखक ने लिखे थे ये बताइएगा। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि रीगल सिनेमा जमशेदपुर में ये फिल्म देखी थी और बस वो दौर याद आ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विगत 9 महीनों में कुछ अजीज दोस्तों को खोया है जिनसे हमारा रीयूनियन गुलजार रहता था। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस वर्ष हमने खोवे की बर्फी पाई। भाई ये मजाक का जो तरीका है ये मजेदार है। इसके अलावा एक और श्रोता जो कहते हैं कि अपने कॉलेज और दोस्तों की याद की तरफ घूम गए इस गाने को सुनकर। अक्टूबर अपनी गरिमा और पूरी लालिमा के साथ उपस्थित है और जब ये गीत आने वाला पल रेडियो पर बजता है तो लगता है कुछ भी नया पाने की चाहत में वो सब कुछ गवा देना जो पहले से तुम्हारा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख

आपस में नोकझोंक होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस दृष्टिकोण से ये इबारत लिखी हुई लग रही है। चलिए भाई, जब रूठने का जिक्र आ गया है तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आज आप किससे रूठे हुए हैं, आज आप किससे रूठे हुए हैं और क्यों रूठे हुए हैं।

अवतार फिल्म का ये गाना राजेश खन्ना और शबाना आजमी, बहुत ही प्यारी सामाजिक फिल्म थी ये, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता जिन्होंने लिखा कि आनंद बख्शी का लिखा ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। गोलमाल सबसे पहले दूरदर्शन पर देखी थी, पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर फिल्में देखता था। घर के बुजुर्गों को ये फिल्म खासतौर पर पसंद आई थी। एक श्रोता ने जवाब दिया है कि शानदार और चुटीले डायलॉग गोलमाल फिल्म के डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखे थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि दुनिया की भीड़ में अकेले आदमी को

भाई देखिए, ये इतना प्यारा गाना और यूं लगता है कि जैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया। ये प्यार कोई खिलौना नहीं, हर कोई ले जो खरीद। हमारे एक श्रोता ने ये पंक्ति लिखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है, ये गीत ऐसा है जैसे कहीं दूर क्षितिज पर बस मन बढ़ा चला जा रहा है। हीरोइन का चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और हल्की सी मुस्कान इस गीत का पीछा करती है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि संभाजी नगर में अवतार फिल्म देखी थी। उसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हम आपसे रूठे हुए हैं क्योंकि आप पहले प्रोग्राम को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करते थे पर अब नहीं करते। भाई ऐसा आपको क्यों लगा? अंदाज तो वही है, कार्यक्रम भी वही है और वैसे ही तो पेश किया जा रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि इस गीत की खासियत यह है कि इसमें कोई अंतरा रिपीट नहीं होता। देवानंद एक ही जगह पर पूरा गीत गाते हैं और साथ में जाहिरा हैं। नीरज ने ये गाने लिखे थे, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गाना सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि देव आनंद गा रहे होंगे। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने विविध भारती की सालगिरह पर प्रसारित कार्यक्रम अच्छा लगा इसकी बधाई दी है और कहा है कि अक्टूबर का महीना शुरू होते ही त्योहारों की खुशबू महसूस होने लगती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अक्टूबर आते ही जो सबसे खुशी की बात होती है वो ये कि विद्यार्थियों के लिए अब छुट्टियां करीब हो जाती हैं। वही बढ़िया बात कही है आपने। और अब मुझे लगता है कि चूंकि शायरी की बातें चली हैं तो इसी तरह के ख्याल को आगे बढ़ाते हैं। आप में से कितने श्रोता ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लिखते हैं, शेर कहते हैं या कविताएं कहते हैं? कुछ पंक्तियां हमें लिख भेजिए। तब तक शैलेंद्र सिंह ये बात कह रहे हैं। फिल्म बॉबी के जरिए फैशन की एक नई लहर शुरू हुई थी और फैशन की लहर से फिल्म देखकर वापस भी आती है। क्या आपके जमाने में

एक श्रोता ये लिखती हैं कि या लिखते हैं कि हम कविता करते थे, अब कभी कभार जन्मदिन पर चार लाइनें लिख देते हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि ऋषि कपूर बेल बॉटम में इस गाने में नजर आते हैं। सचमुच में शायर तो नहीं, लेकिन विविध भारती के लिए थोड़ी सी शायरी कर लेते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, फूलों सी नाजुक चांद सी हंसी हो तुम, मेरे दिल के बागों की अकेली कली हो तुम, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत हो तुम। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी कविता लिखी है, यूं तो जिंदगी भर का सफर पर साथ जब तुम्हारा हो, जिनके अंदाज जीने के अंदाज निराले हो जाते हैं, जीना तो हर हाल में। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ तुकबंदियां यूं ही हम कर लेते हैं, मन की तरंगों को शब्दों में समेट लेते हैं, सुरीला सफर संग ताल में ताल कुछ मिला लेते हैं, कोई शाबाशी न दे तो खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं। भाई वाह। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इन नन्ही आंखों में जब भी झांकते हैं हम, भूल जाते हैं जिंदगी के सारे गम, क्या खूब जादू है इन मासूम चेहरों में, हमें फिर से हमारे बचपन से मिलाते हैं हम। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि शैलेंद्र सिंह आए थे नायक बनने, पर राज कपूर की कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और बाद में गायक बन गए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती है कि जब बॉबी आई थी तब ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे घर का नाम बॉबी रख दिया गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि सुरीला सफर का आधा सफर ऑफिस पहुंचते पहुंचते निकल गया, अब इबारत क्या देखें, जो गाने बाकी हैं उनकी लिस्ट उन्होंने लिखी है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो देर से शामिल हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम के गानों का अंदाजा लगा रहे हैं। तो भाई इबारत में से एक गाना तो ये है, लेकिन आपको बताना है कि ये गाना किस कलाकार पर फिल्माया गया है। और हाँ, जरा ये भी बताइए कि लंच टाइम हो गया है, आपके घर पर आज लंच में क्या बना है।

कई लोगों को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आया और इसके अलावा हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने एकदम से मेन्यू लिख दिया है कि आज उनके लंच में क्या है। एक श्रोता है जो मक्के की रोटी और मक्खन है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि सावन में कढ़ी नहीं बनाते, आज सीजन का पहला साग और कढ़ी बनाई है, मक्के की रोटी और मक्खन साथ में है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे गांव देहात में लंच टाइम नहीं होता, एक बार सुबह और एक बार शाम को भोजन बन जाता है। एक और श्रोता है जो लंच करते हुए कार्यक्रम सुन रहे हैं और कहते हैं कि टिफिन में रोटी मिक्स वेजिटेबल है और दाल चावल और अचार। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज तो भाई हमारे घर में मूली की सब्जी बनी है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कि उनके यहाँ चना और तुअर की दाल मिक्स करके बनी है, हरा धनिया डाल के, और इसके अलावा आलू की सब्जी, और उनको महीनों में 30 दिन आलू की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अक्टूबर की खास बात यह है कि प्रकृति भी शांत हो जाती है, ना बादल ना बिजली, नदी की धारा की तरह शांत हो जाती है, बदली हुई ऋतु का मन पर भी प्रभाव पड़ता है, उदासी और नीरसता को दूर करते हैं अक्टूबर के महीने में आने वाले उत्सव। एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ लंच में आज दाल चावल रोटी और अचार है, ये मेरा फेवरेट खाना है। ये कितने लोगों का फेवरेट खाना है ये भी बताइएगा। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि रजा मुराद पर फिल्माया गया है ये गाना और हमारे शहर के एक मुशायरे में कई बार वो आ चुके हैं। एक श्रोता हैं जिनके

घर पर आज दाल बाटी परोसी जा रही है भाई, मुंह में पानी आ गया। एक और श्रोता है जिनके घर में है आलू परवल की सब्जी, दही, पापड़, कच्ची मिर्ची और कढ़ी। ओहो हो हो हो। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने अपनी एक लघु कथा भेज रखी है, पर कार्यक्रम में वक्त कम है और इसलिए लघु कथा पढ़ना यहां संभव नहीं है। और एक श्रोता है जिनके घर में बन रही है बेसन की कढ़ी, कोथिंबीर की करी, कमल ककड़ी, भाई क्या क्या मेन्यू है, छोले भटूरे और रोटी किसी के घर का मेन्यू है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहां विविध भारती के स्टूडियो में कार्यक्रम करते हुए और यहां कोई दाल बाफला खा रहा है, कोई परवल और आलू की सब्जी और ओ हो हो हो हो। बस अब मैं मुझे लगता है कि अब ये खाने का मेन्यू नहीं पढ़ना चाहिए, गाने के मेन्यू की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातों वाला मेन्यू है इनमें हो गया है मुंह में पानी। छोटी बात

एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि भाई मजा आ गया आज के इस कार्यक्रम में, इतना सारा मेन्यू सुनकर आप लोगों को बांधे रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, देखिए ये जो खाने पीने की बातें, इनको सुनकर मुंह में पानी भी आ गया और गला भी फंसने लगा, ये क्या हो रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब आप सबके घर के लंच का मेन्यू सुनकर मुझे अपने घर की रोटी सब्जी नहीं भा रही है। मजेदार है, अभी तो और मेन्यू आने वाला है क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने ये मेन्यू लिख छोड़ा है। इडली सांभर कोई खा रहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही है कि मैं तो खाना बनाते बनाते आपको संदेश पोस्ट कर रही हूं और इस चक्कर में 15 मिनट का काम एक घंटे में हो रहा है क्योंकि थोड़ा खाना बनाते हैं फिर मोबाइल उठाते हैं और उस पर कमेंट लिखना शुरू हो जाते हैं। तो भाई खाना बनाने में व्यवधान हो रहा है सुरीला सफर के जरिए। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज कढ़ी आलू की सब्जी साथ में चटनी बनी है। और एक श्रोता है जिनके घर पर मछली

इलिश बनी है और आलू की सब्जी। एक श्रोता लिखते हैं कि शादी के चलते ज्यादातर घरों में खीर पूड़ी हलवा आलू की सब्जी ही मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल यही मेन्यू पोस्ट किया है और कढ़ी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बनी है, दाल बाफला भी बहुत सारे श्रोताओं के घर पर बन रहा है, तो ये बड़ा ही कॉमन मेन्यू नजर आ रहा है और राजमा चावल भी किसी किसी के घर पर बने। अब सबसे मजेदार बात तो मुझे ये लगी कि ये सारा मेन्यू सुनकर हमारे एक श्रोता ऐसे हैं जिनको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, आप मेरे बारे में भी तो सोचिए जरा कि इतने सारे मेन्यू को सुनकर मुझे कितना लालच आ रहा होगा। अच्छा ये बताइए कि जिस किसी से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाना पसंद करते हैं। जैसे इस गाने में ये जो मोहतरमा है ये पलकों की झालर बन रही हैं।

हरजाई फिल्म का ये गाना कितने सारे श्रोताओं को पसंद है और भाई अब बहुत ही शानदार मेन्यू आ रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ दाल ढोकली सलाद और आम के अचार का भोजन है। एक श्रोता हैं ये लिख रही हैं कि मैं बहुत ही उलझन में हूँ, बहुत दिनों के बाद बेटा घर आने वाला है, उसकी पसंद का खाना बनाए हरी सब्जी तो वो कम पसंद करता है। आपने विविध भारती के श्रोताओं से मेन्यू पूछा तो मुझे लगा कि मैं इसमें से ही कुछ बना लूं, तो भुट्टे बॉईल कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि भाई जब गाने प्रसारित किए जा रहे होते हैं तब आप स्टूडियो में क्या करते हैं, क्योंकि तब तो हम कमेंट कर रहे होते हैं। तो भाई इसका जवाब ये है कि हम कमेंट पढ़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रही हैं कि मैं अपने बेटे के लिए सत्तू की लिट्टी और चोखा बनाती हूं क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद है छुट्टियों में जब वो घर आता है तो ये बताता है। एक श्रोता है जो अपने पतिदेव के लिए बैंगन का भरता और पराठे बनाती हैं। और एक श्रोता लिख रही हैं कि हर गृहिणी को अपने परिवार में अलग अलग सदस्यों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं अभी फिजियोथेरेपी करवा के आई हूं और अब फूलगोभी की सब्जी और मूंग की धुली दाल बना रही हूं, लेकिन इतना सारा मेन्यू सुनकर कंफ्यूज हो गई हूं कि भाई मुझे क्या बनाना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन यहां एक हैरत की बात सामने ये आई है कि खाना बनाने के बारे में सब कुछ महिलाओं ने ही लिखा है, एक भी पुरुष श्रोता ने ये नहीं लिखा कि वो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए क्या खाना बनाते हैं। तो भाई पुरुष श्रोताओं के लिए ये गाना

0: काम की।
1: भाई इस गाने में मोहब्बत बड़े काम की चीज है और ये बेकार बेदाम की चीज है, ये इन दो बातों पर बहस हो रही है। तो चलिए आज एक पोल करते हैं, कितने लोगों को लगता है मोहब्बत काम की चीज है, कितनों को लगता है ये बेकार बेदाम की चीज है।

भाई, हमने आपसे ये पूछा है कि कितने लोगों को लगता है कि मोहब्बत काम की चीज है और कितने लोगों को लगता है काम की चीज नहीं है।

बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने, बल्कि तकरीबन सभी श्रोताओं ने ये कहा है कि मोहब्बत काम की ही चीज है और सुकून से जीने का सबब है। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर प्यार ना हो तो जिंदगी नरक हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने मजाक करते हुए ये लिखा है कि शादी से पहले मोहब्बत काम की चीज है और शादी के बाद काम की चीज नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा मेन्यू भी आ रहा है और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कार्यक्रम में इतना कम वक्त है कि ये मेन्यू शामिल करूं कि ना करूं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव आया था और वो ये, मैंने कहा था कि भाई जो पुरुष खाना नहीं बनाते घर पर उनके लिए ये गाना और बजाया त्रिशूल का गाना, तो एक श्रोता ने सुझाव दिया कि भाई ऐसे पुरुषों के लिए होना चाहिए ये गाना। अब जरा सोचिए कि लिस्ट में तो नहीं था ये गाना, लेकिन जिन श्रोताओं को खाना बनाना नहीं आता पुरुषों को, उनके लिए तो भाई ये मैं के गई वाला गाना ही सही होना चाहिए। फिर बहुत सारे मेन्यू जो हैं, अब तमाम श्रोताओं से तो मैं यही कहूंगा कि आप आज ये जो सुरीला सफर है इसका इसके कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़िएगा और यहां पर जो खाने का मेन्यू है ना, ऐसी लिस्ट बन जाएगी कि कई हफ्तों तक आपके घर पर अच्छा अच्छा खाना बनता ही चला जाएगा। और अब रूठने मनाने वाला गाना कार्यक्रम का तकरीबन आखिरी गाना है। हमने पूछा था आज कौन किससे रूठा हुआ है, ज्यादा लोगों के जवाब नहीं आए, यानी कोई किसी से रूठा नहीं है। भाई किसी से भी रूठिए पर विविध भारती से नहीं।

भाई रूठने की बात तो हो गई। एक श्रोता ने ये लिखा है कि हमारा तो किचन में जाना निषिद्ध है क्योंकि हमें कुछ भी बनाना नहीं आता। अब ये पुरुष श्रोता हैं तो भाई आज ये कहकर इस कार्यक्रम से विदा लेंगे हम कि अगले कार्यक्रम में जब मिलेंगे तो पुरुष श्रोताओं का बनाया हुआ मेन्यू पूछेंगे, तब आप बताइएगा कि आपको कुछ बनाना नहीं आता, वरना तब तक सीख लीजिए क्योंकि

देखिए ना भाई, ये पल किस तरह से बीत गया और कार्यक्रम का वक्त एकदम खत्म हो चुका है। आप सभी के साथ बहुत आनंद आया, आप सभी श्रोताओं ने जिस तरह से कमेंट्स करके साथ दिया और खासतौर पर जिस तरह से आज लंच का मेन्यू बताया, वही मजा आ गया। फिर मिलेंगे और इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि मिलकर तय करते हैं हम सुरीला सफर। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, देश की सुरीली धड़कन। इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारे सभी सखियां सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार और साथ में हेल्दी नमस्कार।
1: बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी सब कुछ अच्छा लगता है।
0: सब अच्छा लगता है और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल, और आज हम विषय बता देते हैं, ध्यान रखा जाता है अच्छे खाने से।
0: बिल्कुल,
1: आज हम बताने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन में छत्तीसगढ़ के चौसेला और बफोरी। हमारे साथियों ने भी इस व्यंजन की रेसिपी भेजकर रखी है, तो हम पढ़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: और
0: जब साफ सुथरा घर होता है ना, तो घर में बैठना रहना कितना अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: अपने पसंद के गाने सुनो, जो चाहे वो करो, अपनी पसंद की किताब पढ़ो, या फिर कुछ अगर ऐसे ही कुछ नाचना है मिलकर सब परिवार के साथ, वो भी कर सकते हैं।
1: और कहीं भी होकर क्या हो, घूम फिर क्या हो, आपको चाहे कितनी भी सुविधाएं मिली हो, लेकिन जब आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो वो हमें स्वर्ग से कम नहीं लगता है, है ना?
0: कैसे सुकून वाली हम सांस लेते ना, हाँ घर।
1: और आज कथा सुधा में हम अमावस की रात का भाग दो सुनवाने वाले हैं।
0: बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने संदेशों में भेजा है कि वो इंतजार कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद जरूरी है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सुनेंगे एक गीत।
0: बिल्कुल भाई, संवाद तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में गीतों का होना बहुत आवश्यक है।

0: बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात। अब तक आपने सुना,
2: दीपावली की संध्या थी। पंडित देवदत्त अपने अर्ध अंधकार वाले कमरे में मौन परंतु चिंता में निमग्न थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरजा की जिंदगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना लिया है। पंडित देवदत्त के पूर्वजों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेन देन किया करते थे। पंडित देवदत्त का उन लेखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता जिसमें 70 लाख रुपयों की रकम छुपी हुई थी। इस नगर में लाला शंकर दास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। वैद्य जी के हृदय के कोमल भाग तक पहुंचने के लिए देवदत्त ने बहुत कुछ हाथ पैर चलाए। वो आंखों में आंसू भर के आता किंतु वैद्य जी का हृदय ठोस था, उसमें कोमल भाव था ही नहीं।
1: आइए अब सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
2: वही अमावस्या की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतने वाले अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारने वाले अपनी रुष्ट और क्रोधित स्त्रियों से क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घंटी के लगातार शब्द वायु और अंधकार को चीरते हुए कान में आने लगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निस्तब्ध अवस्था में अत्यंत भली प्रतीत होती थी। ये शब्द समीप हो गए और अंत में पंडित देवदत्त के समीप आकर उस खंडहर में डूब गए। पंडित जी उस समय निराशा के अथाह समुद्र में गोते खा रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी अधिक प्यारी गिरिजा का दवा दर्पण कर सकें। क्या करें, इस निष्ठुर वैद्य को यहां कैसे लाएं? जालिम, मैं सारी उम्र तेरी गुलामी करता, तेरे इश्तहार छापता, तेरी दवाइयां कूटता। आज पंडित जी को यह ज्ञात हुआ कि 70 लाख की चिट्ठी पत्रियां इतनी कौड़ियों के मोल भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहंकार अब आंखों से दूर हो गया। उन्होंने उस मखमली थैले को संदूक से बाहर निकाला और उन चिट्ठी पत्रियों को जो बाप दादों की कमाई का शेषांश थी और प्रतिष्ठा की भांति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक एक कर दिया को अर्पण करने लगे। जिस तरह सुख और आनंद से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाती है, उसी प्रकार वो कागजी पुतलियां भी उस प्रज्वलित दिया के धधकते हुए मुंह का ग्रास बनती थी। इतने में किसी ने बाहर से पंडित जी को पुकारा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। वे नींद के अंधेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आए। देखा कि कई आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूंड से उस अरण्य के वृक्षों को उखाड़ रहा है जो द्वार पर द्वारपालों की भांति खड़े थे। हाथी पर एक सुंदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रंग की रेशमी पाग है। माथे पर अर्ध चंद्राकार चंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूछें, मुखारविंद से प्रभाव और प्रकाश टपकता हुआ कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कलीदार अंगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में लटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और जंजीर उसके सजीले शरीर पर अत्यंत शोभा पा रहे थे। पंडित जी को देखते ही उसने रकाब पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वंदना की। उसके इस विनीत भाव से कुछ लज्जित होकर पंडित जी बोले,
3: आपका आगमन कहाँ से हुआ है?
2: नवयुवक ने बड़े नम्र शब्दों में जवाब दिया,
4: मैं आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है, मैं वहाँ का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुग्रह किए हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा संपदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और मुझे बहुत दिनों से आपके दर्शन की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिल गया, अब मेरा जन्म सफल हुआ।
2: पंडित देवदत्त की आंखों में आंसू भर आए। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था। वो दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी थोड़ी देर के लिए विदा हो गई। वे गंभीर भाव धारण करके बोले,
3: ये आपका अनुग्रह है जो ऐसा कहते हैं। नहीं तो मुझ जैसे कपूत में तो इतनी भी योग्यता नहीं है जो अपने को

0: उन लोगों की संतति कह सकूं।
1: इतने में नौकरों ने आंगन में फर्श बिछा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे और बातें होने लगी, वे बातें जिनका प्रत्येक शब्द पंडित जी के मुख को इस तरह प्रफुल्लित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूलों को खिला देती है। पंडित जी के पितामह ने नवयुवक ठाकुर के पितामह को 25,000 रुपए कर्ज दिए थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहता था, इसलिए जरूरी था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो उसकी एक एक कौड़ी चुका दी जाए। ठाकुर को अपने पुराने बही खाते में ये ऋण दिखाई दिया। 25 के अब 75,000 हो चुके। वही ऋण चुका देने के लिए ठाकुर आया है। धर्म ही वो शक्ति है जो अंतःकरण में ओजस्वी विचारों को पैदा करती है। हाँ, इस विचार को कार्य में लाने के लिए पवित्र और बलवान आत्मा की आवश्यकता है, नहीं तो वे ही विचार क्रूर और पापमय हो जाते हैं। अंत में ठाकुर ने कहा,
2: आपके पास तो वे चिट्ठियां होंगी।
1: देवदत्त का दिल बैठ गया। वे संभल कर बोले,
0: संभवतः हो, कुछ कह नहीं सकते।
1: ठाकुर ने बहुत लापरवाही से कहा,
2: ढूंढिए, यदि मिल जाए तो हम लेते जाएंगे।
1: पंडित देवदत्त उठे लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था।
0: शंका होने लगी है कि कहीं भाग्य हरे भाग ना दिखा रहा हो। कौन जाने वो पुर्जा जलकर राख हो गया या नहीं। यदि ना मिला तो रुपए कौन देता है। शोक की दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूट जाता है। हे भगवान, हे भगवान, वो पत्री मिल जाए। हमने अनेक कष्ट सहे हैं, अब हम पर दया करो, अब हम पर दया करो।
1: इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गए और दिया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उलट पुलट कर देखने लगे। वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भांति आनंद की अवस्था में 2-3 बार कूदे, तब दौड़कर गिरजा को गले लगा लिया और बोले,
0: प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो अब तो बच जाएगी गिरजा, अब तो बच जाएगी।
1: उन्मत्तता में उन्हें ये एकदम नहीं जान पड़ा कि गिरजा अब नहीं है, केवल उसकी लोथ है। देवदत्त ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इसी तेजी से आए मानो पांव में पर लग गए, परंतु यहां उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनंद की उमड़ती हुई तरंग को रोक कर कहा,
0: लीजिए, वो पत्री मिल गई, संयोग की बात है, नहीं तो 70,00,000 के कागज दीमकों के आहार बन गए।
1: आकस्मिक सफलता में कभी कभी संदेह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को संदेह हुआ कि कहीं वो उसे फाड़कर फेंक न दे। यद्यपि ये संदेह निरर्थक था, किंतु मनुष्य कमजोरियों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने बेपरवाही से पत्री को लिया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा,
2: अब मुझे विश्वास हुआ, ये लीजिए आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पूर्वजों की मुक्ति हो जाए।
1: ये कहकर उसने अपनी कमर से एक थैला निकाला और उसमें से 1-1,000 के 75 नोट निकालकर देवदत्त को दे दिए। पंडित जी का हृदय बड़े वेग से धड़क रहा था, नाड़ी तीव्र गति से कूद रही थी। उन्होंने चारों ओर चौकन्नी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है, और तब कांपते हुए हाथों से नोटों को ले लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की व्यर्थ चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की, केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और अपने जेब में डाल लिया।

वही अमावस्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुंधले हो चुके थे। सूर्य नारायण के आने का आभास हो रहा था। उदयाचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हल्के श्वेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पंडित देवदत्त

0: ठाकुर को विदा करके घर चले। उस समय उनका हृदय उदारता के निर्मल प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूमधाम से सुनने का निश्चय हो चुका था। गिरजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गए। अंतापुर में ही उन्होंने शालिग्राम के सम्मुख मनसा वाचा कर्मणा सिर झुकाया और तब शेष चिट्ठी पत्रियों को समेटकर उसी मखमली थैले में रख दिया। किंतु अब उनका यह विचार नहीं था कि संभवतः उन मुर्दों में भी कोई जीवित हो उठे। वरन जीविका से निश्चिंत हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य और उत्साह के नशे में मस्त थे।
1: अब मुझे जिंदगी में अधिक संपदा की जरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है, इससे मेरी और गिरिजा की जिंदगी आनंद से कट जाएगी।
0: उन्हें क्या खबर थी कि गिरिजा की जिंदगी पहले कट चुकी है। देवदत्त के दिल में ये विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरिजा इस आनंद समाचार को सुनेगी उस समय अवश्य उठ बैठेगी। चिंता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है। जिसे भरपेट कभी रोटी नसीब न हुई, जो कभी नैराश्यमय धैर्य और निर्धनता के हृदय विदारक बंधन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो ही क्या सकती है। ये सोचते हुए वे गिरिजा के पास गए और आहिस्ता से हिलाकर बोले,
1: गिरिजा गिरिजा आंखें खोलो, देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की है। गिरिजा गिरिजा कैसी तभी।
0: किंतु जब गिरिजा तनिक भी ना मिनकी तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुंह की ओर देखा। हृदय से करुणात्मक ठंडी आह निकली। वे वहीं सिर थाम कर बैठ गए। आंखों से शोणित की बूंदें सी टपक पड़ी।
1: क्या ये संपदा इतने महंगे मूल्य पर मिले है? क्या परमात्मा के दरबार से मुझे इस प्यारी जान का मूल्य दिया गया है? ईश्वर तुम खूब न्याय करते हो। मुझे गिरिजा की आवश्यकता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं। ये सौदा बड़ा महंगा है, ये सौदा बड़ा महंगा।

अमावस्या की अंधेरी रात गिरिजा के अंधकार में जीवन की भांति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलाने वाले किसान ऊंचे और सुहावने स्वर से गा रहे थे। सर्दी से कांपते हुए बच्चे सूर्य देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनघट पर गांव की अलबेली स्त्रियां जमा हो गई थीं। पानी भरने के लिए नहीं, हंसने के लिए। कोई घड़े को कुएं में डालकर अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी, कोई खम्भों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुस्कुराकर प्रेम रहस्य की बातें करती थी। बूढ़ी स्त्रियां पोतों को गोद में लिए अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएं से नहीं लौटी। किंतु राज वैद्य लाला शंकर दास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खांसते हुए बच्चे और कराहते हुए बूढ़े उनके औषधालय के द्वार पर जमा हो चले थे। इस भीड़ भब्बड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुंदर किंतु मुरझाए हुए नवयुवक टहल रहे थे और वैद्य जी से एकांत में कुछ बातें करना चाहते थे। इतने में पंडित देवदत्त, नंगे सिर नंगे बदन, लाल आंखें, डरावनी सूरत, कागज का एक पुलिंदा लिए हुए दौड़ते हुए आए और औषधालय के द्वार पर इतनी जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्य जी चौंक पड़े।

0: और कहार को पुकार कर बोले कि दरवाजा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गए किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ निद्रा का रोग था जो वैद्य जी के लगातार भाषण और फटकार की औषधियों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का चिलम की चिंता में आग ढूंढने चले गए। हकीम जी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए और नोटों का पुलिंदा उनके आगे पटक कर बोले,
1: वैद्य जी ये 75,000 के नोट है, ये आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। अब आप चलकर गिरिजा को देख लीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि वो केवल एक बार आंखें खोल दे। ये उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है, केवल केवल एक दृष्टि पर। आपको रुपए मनुष्य की जान से प्यारे हैं, वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुना प्यारी है। इन रुपयों से कई गुना प्यारी
0: है। वैद्य जी ने लज्जा में सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा,
2: मुझे शोक है, मुझे अत्यंत शोक है। सदैव के लिए तुम्हारा अपराधी हूं, किंतु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो ऐसी भूल कदापि न होगी। मुझे शोक है, सचमुच शोक है।
0: ये बातें वैद्य जी के अंतःकरण से निकली थी।
3: आज आपने सुना कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमावस की रात का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, गिरिजा राजुल अशोक, पंडित देवदत्त जी श्याम, वैद्य लाला शंकर दास जयंत्र पात्रिकर, ठाकुर नवयुवक, दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: अंतराल का वक्त हुआ खत्म और कार्यक्रम चल रहा है
1: सखी सहेली और हमारे साथियों ने कथा सुधा में आनंद लिया होगा और अब है हम लोगों के आपस में बात करने की बारी और शिक्षक और विद्यार्थियों में संवाद है यहाँ पर बहुत जरूरी शिक्षक
0: ज्यादा जरूरी
1: है ना। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में जो शिक्षा को बेहतर और अच्छा बनाता है प्रभावशाली बनाता है तो उसमें आपस में एक दूसरे से बात करना जिसे कहते हैं ना संवाद करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो विद्यार्थी के अंदर अपनी जिज्ञासाएं और समस्याएं होती हैं वो खुल करके अपने शिक्षक से बात करते हैं अपने उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं और शिक्षक भी जो होते हैं उनकी कठिनाई को समझकर उनका सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और सीखने में रुचि भी पैदा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा और इतने सारे संदेश आए हैं इस विषय पर हमारे सभी श्रोताओं के। एक संदेश ये कहता है कि शिक्षा का ज्ञान और विद्यार्थी की जिज्ञासा जब संवाद के माध्यम से मिलते हैं तो सीखने की प्रक्रिया और भी सुंदर बन जाती है। संवाद न केवल ज्ञान बढ़ाता है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच विश्वास और अपनापन भी गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल और हमारी एक साथी लिखती है कि मैं स्वयं एक शिक्षिका रही हूं और मुझे पता है कि हर विद्यार्थी के मन में अनेक प्रश्न होते हैं उसके लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद जरूरी है। जब विद्यार्थी बिना डर के शिक्षक से अपनी बात कहता है तब सीखने सिखाने की प्रक्रिया सरल हो जाती है और संवाद के माध्यम से विद्यार्थी बिना झिझक अपने सवाल कठिनाइयां और विचार शिक्षक के सामने रखता है। इससे शिक्षक भी विद्यार्थी की रुचि

0: क्षमता और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार ही उन्हें सही सलाह देते हैं। वैसे सही बात है दीपा, जो टीचर होते हैं, हमारे शिक्षक होते हैं, तो ये नहीं कि आप एक तरह से बोल रहे हो और हर बच्चे वही समझे। आपको हर बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना पड़ता है, इसको किस भाषा में, सरल भाषा में समझ में आता है, कोई आपकी पहली ही भाषा को समझ जाता है, तो बच्चों के हिसाब से भी हमें समझाना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और जैसे ऐसा लगता है उत्तर ही इस बात का आ गया है एक संदेश के द्वारा, कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता बल्कि छात्र को मानसिक और भावनात्मक संबल भी देता है, जिससे छात्र परीक्षा के तनाव या निजी समस्याओं को आसानी से साझा कर पाता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद के परिणाम स्वरूप ही श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई, जो आज भी संपूर्ण मानवता को जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बहुत अच्छी सी आपने बात लिखी,
1: बहुत अच्छे से बताया। और ये भी बात दिखी है संदेश के माध्यम से हम तक पहुंच रही है, ये कह रहे हैं कि जब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में लगातार बातचीत करते हैं तो छात्रों के मन का डर और झिझक खत्म हो जाता है और विद्यार्थी बिना किसी संकोच के अपने सवाल और समस्याएं शिक्षक के सामने रख पाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। और ये बहुत जरूरी, अगर डरते ही रहेंगे तो अपने डाउट्स हैं या हमें कुछ पूछना है, न सिर्फ अपने जो किताबी ज्ञान है उसके लिए नहीं, शैक्षणिक जो ज्ञान है उसके लिए नहीं, कुछ जीवन में भी कभी कुछ ऐसा लगता है ना लाइफ में कि हमें ये करना है नहीं करना है, कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो हम घर में नहीं बोल पाते।
0: बिल्कुल।
1: और हम लेकिन टीचर से थोड़े से नजदीक रहते हैं और उन्हें बता पाते हैं तो वो हमें सही राह दिखाते।
0: बिल्कुल। और तुम्हें याद होगा कि क्लास में जब कुछ बच्चे जिनको लगता है कि थोड़ा सा डर लगता है, संकोची होते हैं, याद नहीं हुआ तो वो पीछे बैठ जाते हैं जाकर के, और कभी कभी जो शिक्षक भी इतने होते हैं, ज्ञानी होते हैं, कि वो पीछे वाले से इशारा करते हैं कि तुम नजर पैनी होती नजर। तो देखते हैं अब हमारे साथी अगले साथी क्या लिखते हैं, कि लिखते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद शिक्षा की बुनियाद है। जब एक शिक्षक और छात्र आपस में खुलकर बातचीत करते हैं तो न केवल ज्ञान का आदान प्रदान बेहतर होता है बल्कि छात्र का सर्वांगीण विकास भी होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संवाद के क्लासरूम संवाद दस्तावेजों की तरह ही हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक होना चाहिए। यह संवाद ही शिक्षा को बोझिल प्रक्रिया से हटाकर एक आनंददायक अनुभव में बदलता है।
1: बिल्कुल। जब ये पूरा जो यात्रा है शिक्षण की, जब ये ऐसी सुमधुर हो जाए और इतनी निडर वाली हो जाए ना, तो हर चीज हमारे दिमाग में एकदम साफ सुथरी होती है।
0: बिल्कुल।
1: और इसी बात को आगे एक और संदेश के द्वारा हमारे श्रोता बताते हैं कि जब शिक्षक विद्यार्थी से खुलकर बातचीत करते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं और समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे बिना झिझक अपने विचार, प्रश्न और कठिनाइयां साझा कर पाते हैं। वहीं शिक्षक भी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हाँ, अगर बोलेंगे ही नहीं, बच्चे बताएंगे नहीं, तो टीचर्स भी कर क्या लेंगे।
0: बिल्कुल।
1: बच्चे का बोलना, स्टूडेंट का बोलना बहुत जरूरी है ना।
0: कभी बताएंगे
1: ही नहीं, चुपी रहेंगे तो एक शिक्षक या शिक्षिका बता क्या उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करो या किस तरह उन्हें बोले या बताए कि समझाएं।
0: नहीं, कई बार दीपा क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं ना, वो डरे सहमे से रहते हैं, उनको बोलने में लगता है मैं ये बोलूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए,
1: कभी कभी डरते भी सबके सामने बोलने।
0: तो जो हम जो टीचर होते हैं ना, वो इतने जो पारखी होते हैं कि वो समझ भी जाते हैं, उस बच्चे को बुलाकर प्यार से करते हैं तो वो उसको हैंडल भी कर ले जाते हैं, समझा पाते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संवाद रूपी सेतु जरूरी, हमारे साथी लिखते हैं, जो एक दूसरे के विचार रूपी प्रवाह को पार करवाने में आसान बनाता है। आपसी विश्वास बढ़ता है, समय समय पर फीडबैक मिलने पर सीखने की प्रक्रिया आसान बन जाती है, मानसिक तनाव में कमी आ जाती है, प्रोत्साहन भरे शब्द और सहयोग छात्रों में नेतृत्व गुण के साथ आत्मसम्मान को जगाते हैं और बढ़ाते हैं। जैसे हम विविध भारती के साथ कमेंट के द्वारा एक दूसरे के विचार का आदान प्रदान करते हैं और कर रहे हैं, उद्घोषक हमारे विचार को जब वाचा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है, आपके विचार जब हमें मिलते हैं तो उसमें भी ज्ञान की बातें छुपी होती है और हम लोग को भी ज्ञान मिलता है। ऐसा नहीं है,
1: ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कह रहे हैं और आप अनुसरण कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: आपकी कई बातों का हम अनुसरण करते हैं और कई बार तो आपके संदेश हम संभाल के रख लेते हैं।
0: हाँ, आगे काम आएंगे,
1: काम आएंगे, है ना। और बात शिक्षक और विद्यार्थी की हो रही थी, जब कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ लेता है या लगता है कि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, तो नहीं हम सब कहते हैं कि तुम बहुत बड़े बनोगे एक दिन, और हम उस दिन जब तुम बड़े बन जाओगे तो हमारे पास आना या हम तुम्हारे पास आएंगे। तो कहीं
0: देखो, आज हम विश्व शिक्षक दिवस भी है तो हम लोग ये बातें इसी विषय पर कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, हमें आगे जीवन जीवन में बढ़ने की।

0: बिल्कुल नहीं भाई, एक विद्यार्थी कभी अपने शिक्षक को नहीं भूलता है,
1: बिल्कुल,
0: तो चाहे कितनी भी आसमान की ऊंचाइयां छू ले।
1: बिल्कुल, और भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है आगे बढ़ने का। और जब देखो घर साफ होता है तो हमारा भी मन करता है उसमें आराम से सुकून से बैठने का, और जब बच्चों का कमरा साफ सुथरा होता है तो बच्चों का पढ़ने में भी मन लगता है, है ना।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, भले छोटी छोटी सी बात हो लेकिन सच में जब साफ सुथरा घर हो, आपकी टेबल बिल्कुल साफ सुथरी हो, आपके करीने से सारी किताबें लगी हैं, आपके जो स्टेशनरी का सामान है सब एक तरफ अच्छे से रखा है, और सुबह का वक्त हो तो सच में ऐसा लगता है बस बैठ जाओ और अब हम अगला एक घंटा नहीं हिलेंगे।
1: तो हम फिलहाल अभी नहीं हिलेंगे, हम कमेंट्स पर जाते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि स्वच्छ घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगता बल्कि मन को भी सुकून देता है। साफ सुथरा वातावरण तनाव कम करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। घर की सफाई के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, एक ही दिन में पूरी सफाई करने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटें। अनावश्यक सामान जमा न होने दें, जो चीज लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है उसे जरूरतमंद को देना या हटाना घर को

0: व्यवस्थित रखने का अच्छा तरीका है।
1: बिल्कुल सही कहा। और घर में हर सामान की एक निश्चित जगह होनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद चीज को वापस उसी जगह पे मंजरी रख देना चाहिए तो अच्छा रहता है। इससे क्या समय की भी बहुत बचत हो जाती है और सुबह के वक्त अगर कुछ मिनट खिड़की दरवाजे खोलकर ताजी हवा और धूप को भी अगर हम घर में आने दें तो देखो घर का वातावरण कितना खुशनुमा महसूस होता है।
0: बिल्कुल। और रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें, सिंक, गैस चूल्हा, प्लेटफॉर्म और कूड़ेदान को नियमित रूप से साफ करें। बाथरूम की सफाई को टालें नहीं, गीलापन और नमी लंबे समय तक रहने से दुर्गंध और गंदगी बढ़ती भी है। घर में कम सामान ज्यादा खुली जगह रखने की कोशिश करें। खुला और व्यवस्थित घर मन को भी हल्का महसूस कराता है और सफाई करते समय पर्यावरण पर ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा पानी और केमिकल वाले क्लीनर इस्तेमाल ना करें।
1: बिल्कुल। और हो सके तो संभव हो तो घर में हरे पौधे लगाने चाहिए घर के, क्योंकि पौधे जो हैं वो घर की सुंदरता बढ़ाने में देखो और वातावरण को भी कितना जीवन बनाते
0: बिल्कुल,
1: हैं ना।
0: बिल्कुल।
1: और सफाई सिर्फ फर्श और फर्नीचर की नहीं हो बल्कि हमारे घर में पर्दे हैं, फिर पंखे हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, फिर दरवाजों के हैंडल और पर्दों के वो जो रॉड होते हैं सब कुछ साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, खासतौर पे वो स्विच बोर्ड सबकी उंगलियों के
0: निशान धरता, बिल्कुल सही पॉइंट तुमने किया,
1: साफ करना बहुत जरूरी है।
0: और घर को सुगंधित रखने के लिए बहुत तेज कृत्रिम खुशबू के बजाय फूलों, कपूर या हल्की प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें। साफ सफाई पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं है। बिल्कुल सही बात लिखी।
1: अब देखो घर में ऐसा नहीं कि हम बात करें तो सखियां कहेंगी आप तो कह रही ये भी साफ कर दो ये भी साफ कर दो, नहीं, सबको बांटिए। जब बच्चे जिस दिन घर पे छुट्टी होती है उनको कहिए उनका कमरा वो खुद साफ करेंगे। अगर उनका कमरा नहीं भी है तो जिस जगह पे वो बैठते हैं उनका बैग हो गया या जहां पर उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह रखते हैं, उनके कपड़े रखे जाते हैं, वो अलमारी का वो खन या शेल्फ उनको बोल दीजिए कि आपको ये साफ करना है। इसी तरह से घर के जो हमारे श्रोता भाई सुन रहे हैं, थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा थोड़ा सा अगर आप मदद कर देंगे ना, आप देखिए घर के महिलाओं के चेहरे पर अगर हंसी ना आई तो आप आकर हमें डांट सकते हैं
0: और बढ़िया आपको चाय भी मिलेगी पीने को। अरे हमारे साथी और लिखते हैं कि सुकून भरे स्वच्छ घर, ये वाक्य पढ़कर ही कितना सुकून मिल रहा है। हमारा घर हो या कार्य क्षेत्र या फिर सार्वजनिक स्थान हो, स्वच्छता हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। स्वच्छता है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये लिखते हैं, और स्वच्छता जहां होती वहां पे बरकत होती। बहुत सही बात है। हमें घर के साथ साथ जो चीजें आपने लिखी जहां जहां के बारे में, उन सबको भी हमारा ही कर्तव्य है कि उन्हें साफ रखें।
1: बिल्कुल। अच्छा एक और संदेश कहता है कि साफ सुथरा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन की वो अवस्था है जहां शारीरिक थकान बहुत कम महसूस होती है, जहां धूल नहीं होती वहां बेचैनी भी नहीं टिक पाती है, क्या बात है, और जहां हर चीज अपनी जगह पर है वहां विचार भी बिखरते नहीं। ऐसे घर में सुबह की चाय की खुशबू, आंगन की धूप और शाम की शांति ज्यादा गहरी लगती है, क्योंकि सफाई आंखों को ही नहीं आत्मा को भी हल्का कर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्वच्छता से घर बड़ा नहीं होता पर दिल बड़ा हो जाता है और वहीं से सुकून जन्म लेता है। सुकून भरे स्वच्छ घर की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि वो बोलता नहीं पर सिखाता बहुत कुछ है। और आपके इस कमेंट ने तो ऐसा लगता है सब कुछ सारी बात एक संदेश में समा गई।
0: बिल्कुल। हम एक साथी लिखते कि मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है सो उन्हें सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कल संडे और सैटरडे उन्होंने पूरे घर की सफाई की, साथ में मैंने और मेरे बेटे ने हेल्प करी। गुजरात में ऐसा मानते हैं कि दिवाली से पहले नवरात्रि में माता रानी जी के आगमन से घर की पहले ही घर की साफ सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात लिखा है। अब समय आ ही चुका है कि माता रानी भी आने वाली है तो हमें तो बहुत ध्यान रखना है।
1: और एक और हमारे श्रोता भाई श्रोता ने हमें लिखा है कि गुजराती में उन्होंने एक कहावत लिखी कि सुंदरता पामवा माटे सुंदर बनवू पड़े, यानी कि सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है, फिर ये सुंदरता भीतर से हो या बाहर से दोनों तरफ आवश्यक है। इसी तरह घर जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता है उतना ही अंदर से सुंदर हो तब सोने पे सुहागा हो जाएगा।
0: भाई देखो घर भी सुंदर हो, आपका मन भी सुंदर होना चाहिए। आपके घर में जो भी आने वाला है उनका स्वागत आप मन से दिल से करते हैं तो वो घर और भी सुंदर लगेगा, है ना। और एक लिखते हैं कि सुकून भरा स्वच्छ घर जब साफ और व्यवस्थित होता है तो वहां कदम रखते ही दिन भर का तनाव और मानसिक थकान जो है पल भर में काफूर हो जाती है। दरअसल सफाई सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं बल्कि जीवन की उलझनों को बुहार कर सुकून को आमंत्रित करना है। एक स्वच्छ घर वो है जहां पावन मतलब स्वच्छ घर का वो पावन कोना है जहां हमारी आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और बुहार कर जो शब्द आया है ये बहुत समय बाद सुनने को मिला है तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा एक शायद ये हमारे श्रोता भाई ने संदेश लिखा है, उन्होंने कहा दोपहर में 2 मिनट निकालकर अपनी मेजों की जांच करें, रैपर है, रसीदें हैं या कप वहां पड़े रहते हैं ना, क्योंकि ऑफिस में सुबह की चाय हो ही जाती है, वो

0: सब कुछ हटा दें, सतह को पोंछ लें। दोपहर में टेबल को फिर से सेट करने की से जगह जो है वो ताजा रहती है और सामान फैलने से रुकता है। बिल्कुल सही कहा भाई। अगर आप ऑफिस पे हैं या कुछ ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपका सिटिंग जॉब है, तो ये बीच बीच में दो दो मिनट निकाल के भी ऐसी सफाई खुद कर दें। कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने के लिए कि ये कप हटाओ, ये ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, खुद कर देते हैं।
1: कई बार तो क्या होता है कि आपकी जो डाइनिंग टेबल है उस पर आपने कोने में सामान रखा है, लेकिन धीरे धीरे होते होते शाम होते होते वो आधी डाइनिंग टेबल को कवर कर देता है।
0: हर घर में डाइनिंग टेबल
1: कोना भरे रहती है जमाने के लिए, क्योंकि लगता है ये चीज भी यहीं से ले लेंगे, अचार भी ले लेंगे, नमक भी ले लेंगे, चटनी भी ले लेंगे। अरे भाई इसको थोड़ा किनारे रखो,
0: भले आप रखिए उस पे सामान, लेकिन वो सिर्फ सामान जमा करने की जगह ना हो जाए। कई घरों में ऐसा होता है कि टेबल तो है, डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन सब नीचे बैठ के खाते हैं। बेशक खाइए, लेकिन डाइनिंग टेबल को ऐसा सामान उठा करके ला के
1: अलमारी ना बनाइए। चलो एक गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: मंजरी, उस संदेश के बारे में बता रही थी, पढ़ के बताओ।
4: हाँ, हमारे साथी लिखते हैं कि घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभाग से ही साफ सुथरा और सुंदर रहता है। अच्छे संस्कार और आदतों से सजे स्वच्छ सुंदर घर में भगवान के सामने रखा पवित्र मंगल दीप, कोने में रखा सुगंधित फूलों का गमला और आंगन या बालकनी की प्रसन्न तुलसी मंजरी भी मन को सुकून देती है। बहुत इन्होंने अच्छी सी बात लिखकर भेजी, लेकिन अब हम इस संदेश के साथ में, खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ते हुए जिन की ओर चलते हैं कि बड़ी देर से
3: घर हमने साफ सुथरा कर लिया, सब
4: तो खाना भी तो पका ले,
3: बहुत भूख लगी
4: है ना। और हमारे को एक साथी लिख भी रहे थे कि हम

0: जो है छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं अक्टूबर में, तो भाई आप जाइए और वहाँ पे जाकर व्यंजन खा के आइएगा
1: और बताइएगा कि कैसा लगा।
0: तो हमारे एक साथी ने भेजा है चौसेला, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, खास तौर से त्योहार पर बनाया जाता है। इसकी सामग्री है कि चावल का आटा 2 कप, नमक स्वाद के अनुसार, अजवाइन या जीरा 1 छोटा चम्मच, और जो तेल लेना है आप आटा गूंदने के लिए, तलने के लिए वो अंदाज से ले लीजिए, गर्म पानी आवश्यकता के अनुसार। चौसेला बनाने की विधि है कि एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें नमक, अजवाइन या जीरा मिला लें। उबलते पानी में ही थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालें और चम्मच की सहायता से चलाएं और उसको फिर ठंडा करें। जब मिश्रण हल्का गुनगुना हो जाए तब हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे नरम आटे की तरह गूंथ लीजिए और ढककर 10-15 मिनट रखिए और आटे की छोटी लोइयां बनाइए। इन्हें दोनों हाथों में से दबाकर तेल से चिकनी की गई पॉलिथीन पर रखकर हल्के हाथों से पूरी बनाएं, और या आप चकले पर भी बेल सकते हैं। और एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन चौसेलों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लें, और इनको आप हरी धनिया की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और बफोरी अगर बनाना है तो उसके लिए देखो इसमें मुख्य रूप से रहता है चने की दाल या मिलीजुली दाल, मूंग मसूर की दाल, उससे तैयार किया जाता है ये व्यंजन। तो इसको बनाने के लिए चना दाल या आप मूंग मसूर की दाल मिक्स ले सकते हैं 1 कप, लहसुन की कलियां 5-6, अदरक ले सकते हैं 1/2 इंच मतलब थोड़ा सा, हरी मिर्च आपके अनुसार 2-3 ले सकते हैं, जीरा छोटा सा 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर थोड़ी यानी 1/2 छोटी चम्मच, हींग चुटकी भर, नमक आप अपने अनुसार डाल लीजिए, और तड़के के लिए लीजिए सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा तेल। बनाने के लिए चने की दाल को 4-5 घंटे या रात भर के लिए पानी में आप भिगो कर रख दो। दाल का पानी निकालकर उसे बिना पानी के या बहुत कम पानी से डालकर मिक्सी में आपको दरदरा पीस लेना है। पीसी हुई दाल में अब आप लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट, हींग, हल्दी और नमक और जीरा डालकर अच्छी तरह फैट लेना है। अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसके ऊपर तेल से चिपड़ी हुई यानी ग्रीस करी हुई जालीदार छन्नी या जो इडली स्टैंड होती है ना वो रखें। इस पर छोटी छोटी पकौड़ियों के आकार में मिश्रण रख दें। इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक या 15 मिनट तक एकदम मीडियम आंच पर भाप में पकाना है, और जब ये बन जाए तो बफरी को बाहर निकालें और पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का तैयार करें। इसे बफोरी पर आप डालिए और फिर देखिए इसका स्वाद कितना अच्छा लगता है।
0: अरे स्वाद तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दीपा, आज तो पक्का मैं ये बनाने वाली हूँ, है ना?
1: बनाने वाली हूँ। तो देखो मैं भी पक्का एक गीत आपको सुनाने वाली
0: हूँ।

पैमाना तू हे हे खाता जा पीता जा हर पैमाना तू हो हो अपना रंग जमाता जा हो दीवाना तू हे हे मस्ती में लहराता जा।

0: दीदी बात, तुम तो कह रही थी कि गाना सुनाने वाली, मैंने सोचा तुम गा के सुनाओगी।
1: गा के नहीं भाई, जिंदा दिल फिल्म का ये गाना सुनाने वाले।
0: अच्छा, तो सुनाएंगे गाना? चीटिंग करी है तुमने।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं की है। और देखो हम भले चीटिंग कर ले, लेकिन
0: घड़ी नहीं करने देगी, है ना?
1: नहीं करने देगी। वो कह रही है चीटिंग का गया समय समाप्त।
0: चलो हम दोनों बहनें निकलो। चलो तो सभी को चलते चलते हम लोग कहते हैं, नमस्कार करते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी और दीपा महेश्वरी का नमस्कार बोलो,
1: और मंजरी का नमस्कार।
0: चलो ठीक है, ओके।